हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकण को सब गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला।

कोटिक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सास क्रूर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल।

मन मुख भूले सब मरह गावा गवार, पवजल डूबे ना उरवार ना पार, सतगुर भेटे

माणी सिद्ध साधक तरसह सब लोए पूरै भाग प्राप्त होए सब किछ साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाने कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए सच सच

करा दिन रात बाहर भीख अंतर मल माया शब सनाह कश करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान सना अनंतर व्यापह रूप समान अंतर गण बाहर तम स्वाह कर पाथर कैसे तरया था जाके अंतर बस प्रभाव नानक तीजन सह समाद सोना अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह जेहो ओढ़ निभावे कहाँ बुजार तूजा डोरा न कहिया तो समझे पूरा कह विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू है उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा तरा संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई तस्य प्रीत बलुआ के गृह पितर बस आनंद कीर माया रंग रस दृढ़ कर मन मन प्रतीत कारण आवे मूढ़ी चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लिहु आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम वात पिता हम बैर तेरे तुमरी कृपा महसूह कनेरे कोई ना जाना तुमरा दूजे ते ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुमरा सूतर धारी तुम ते स्वाग्यकारी तुमरी गातमित तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी श्लोक दीन हर प्रभु छूट के लागे हान सोआई नानक हुना सी जाई बिन नाव पात जाय अष्टपदी दास वस्तु दे पाछा पावे एक वस्तु कारण भी खोट गवावे एक पीना दे दास भी हिर दे ताओ मूढ़ा कहु कहा करिए जय ठाकुर से नाहिं चारा ताकू की जय सतनाम सकारा जय कह मन लग प्रा मीठा सर्व सुख तह मन उठा जय जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया

हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर दिखा अपनी बुढ़िया नान सब में रह समय प्रभ पाव मनुख गात पाव प्रभ पाव पात्र तरव प्रभ पाव सास तिरंग प्रभ पाव हर गुण पाखे प्रभ पाव पत तिव धरा आप कर अपन विचार दुहा श्रेय कर स्वामी की लय विकस अंतर जम जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अपना आवे कहु मनुख ती क्या हुए आवे जो दुख पावे सोई करावे उसका हाथ हुए न सब किस लिए जो दुख पावे सोई करी अन जानत बिखिया मैं हरा चाहे जे जानत अपना बचा परम पुला दह दह तव ने मुख मह चार कुंड फेराव कर कृपा जे सबने भगत दिए नानक तीज जाना ये लेखन में निज कीर्त कराज पार ब्रह्म गिरी उनवाय जा कर दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दह प्रगटावे जा को अपनी कर बख्शिशता करी खाना कर जगदीश जीव पिंड शब्द किरा काट कट गुण ब्रह्म प्रगाह अपनी वर्ण ता बनाई नानक जी वीख बढ़ाई उसका वर नाही सहज कर्म क्रम सर्वनाथ आज्ञा कर बपरा जियो जो तेह पावे सोई फुन थियो कबू चनीच मह बसा कबू सो घर खरंग हस कबू नींद चिंद व्याव हर कबू आकाश पायाल कबू बेत ब्रह्म जा नानका मिलावन हार कबू नृत करे बह पात कबू सोय रह दन रात कबू मह क्रोध विकराल कबू सर्व की उतरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पे खर नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कह जो प्राव राख रह गुरु प्रसा नान खाज कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू अंधार लाव ध्यान कबू ताट तीर्थ स्नान कबू से साधु मह ज्ञान कबू कीर्त हस्त पतंग हुई जियान जन परम परमिया नाना रूप जो स्वागत खा जो प्राप पावत बहन चाह जो तुम पावे सोई हुए नानक दूजा बना के कबू साध संगति हो पावा सह स्थान ते बहन आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश हो सह स्थान कर बिना हमंत नाम रति करंग सदा बस पार ब्रह्म का संग ज्यो जल में जला खटाना त्यो ज्योति संग जो समान मिट गए कौन पाए विश्राम नानू प्राप का साधु कुरबान श्लोक सुखी बस मस्किन आव नवार तली बटी बटी अहंकारिया नानक गर्भ गर अष्टपति अंतर राज सो नर्क पाति उवत समान जो जाना मैं जो बनवंत सोवत विष्टा का जनता उसको कर्मवंत कह जन्म मर वह जो प्रमावे तन भूम कह जो कर गुमायन सो मूर्ख अंत ज्ञान कर कर पाय कह हृदय करी व्यवसाय नानक हम कता कर सुख पावे धनवंत ही कर कर पावे तृण समान काश संग न जाय बल उस कर्मान कुकुर कर पल भीतर तक हो विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाय बसवंत के सहना बदया अहंकार धर्म रह तो करे खुआ गुरु प्रसाद जा को मिटे आप मन सो जा नानक दर प्रवान कोट कर्म कर हो तारी श्रम पावे सकल वीर थारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रावे हर तर कह कहो कैसी कवे आप उसको जो परा कहे तो सह बुलाई निकट न आवे सर्व गिरी जा को मन हुई कह नानक ता कि निर्मल सोई जब लग जाना मुझति काश हुई तब उसका सुख नही कोई जा भी है जाना मैं किस करता तब लाग करो जो ना फरता जब तार को बैरी बीत तब लाग नीह चलना जीत जब लाग मुह भगन संगवाए तब लाग तन राय दी सजाए प्रभु कृपा बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक छूटा सहस खटे लाख कौठ तावे द्रवतना आवे माया पाछ है पवन भोग बिखिया की कर न द्रवतावे खाब खमरा बना संतोख नहीं को राजा सपन मनोरथ व्रत सबका जना रंग सर्व सुख बट बागी के सब रावत हुई करण करावन अभ्यास सदा सदा नान घर जाप कर्म करावन करने हार उसका हाथ कह विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हुआ अभ्याप आप प्रभु सोए जो किसकी नो सा बना रंग सब ते दूर सब हो गए संग भुग जाय देखा कर बबी का बही का बहने कुमार नमन सा बना जाय नान साध ही रहे असमय आप उपदेश समझे आप आप रचे सबका साथ आप गुण अपने विस्तार सब काश उसका हो करने हार उस कहु कि सोय थान थनांदरी का सोय अपनी चल ताव करण यार कहो तो कर रंग आप आर मन में है मन अपनी मह नान कीमत कहना जय सात सात सात प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कहना बखियानी सच सच सच सब कि न कोट मध्य कि न बिरला चि न पर पर तिर रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी कट कट सुनि श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रिय श्लोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हर संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी संत का दुख नार जगट संत का दुख जमत नहीं छोटा है संत का दुख न सुख सब जाए संत का दुख नरक में पाए संत का दुख न मात हो संत का दुख सोभा दिन संत के हती का रखे न कोई संत का दुख तहन भ्रष्ट हो संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग नंदक बीर तारा संत के दुख दे मुख पावे संतन का दुख काग जो लवे संतन का दुख सर्व जोन पाए संत का दुख न त्रिगत जोन कृमाए संतन का दुख तरसनामा जल संत का दुख सब कुछ चले संत का दुख तेज सब जाय संत का दुख न नीच नीचाय संत दुखी का था गुना है नानक संत पावे ता हुई विगत पाए संत का नंदक महाताई संत का नंदक किन टिकन्ना पाई संत का नंदक महा हतियारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज तुहीन संत का नंदक दुखी यार दीन संत का नंदक सर्व रोग संत का नंदक सदा विजोग संत की निंदा दुख मह दुख न
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਇ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵੇਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਾ ਉਡਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਾ ਸਭ ਤਿਆਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਦੇ ਟਰੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਠਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵਤ ਲਈ ਮਿਲਾਇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਆਦਿ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਾ ਹੂਚੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਾ ਉਹਦੇ ਅਨ ਭਰਮਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗਿਲੋਥ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ, ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਹੀ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਾ ਵਰਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵਨ ਰੇ ਉਹ ਬਹਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੇਲ ਲਾਇ, ਜਿਉਂ ਜਰ ਵੀ ਹੂਨ ਵਛਦੀ ਤੜ ਫੜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਕੀ ਦਨ ਤਰਾਪੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੇ।

तिसहि ध्याय वह सास ग्रह सब कह वर ददस का किया जैसा करत है कुथि आपना के राव करण यार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करत सब नाम दी बड़ पागी नानक जान सी इस लोक तज हो सियान सुर जन सिमरह हर हर आई का सर मन रखो नारंग दुख परम पाव जय पति मनुख की टेक वृत्ति सब जान दीवन कोई का भगवान जिस दिय रह आ गए वह न तृष्णा ला गया आई मार रखई को आप मानुख कह कृष्णा हाथ तुका कुंभुज सुख होय तुका नव रखंड पुरे सिमर सिमर सिमर प्राव सूर्य नानक बेगन नाग कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे साथ व्याव हर निर्मल रसना अमृत बियो सदा सुहेला कर लिह जियो नैन पीर ठाकुर करंग सा संग बिन सा सब संग चरण चलो मार्ग बिंद मिटह पव जब यार बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग नानक बुजल मथा बिड़ पागी ती जान जग महे सदा सदा के गुण गाय ही राम नाम जो कर विचार सी तनवंत कनि संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान।

सूर्य नर बन एक ऊपर जस जन की आशा उसकी कट के जाम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तसहना लागे दुख जिस को हर प्रभ मान चित आव सो संत सो हिला न हिला जिस प्रभ अपना कृपा कर सो सेव कह के हृदय डरा जय सत दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत सबूजिया जब देखा तब सब नानक सो सूखम सोया स्थूल नह किस जन्म नह किस मर आपन चलता भी कर आवन जावन दृष्टान दृष्ट आज्ञा कर।

जात सुसुभावंत सकल संसार उदरतनवंत प्राव की सेवक सकल धारण प्राव के सेवक दुख विसारणापी मेल लय कृपा गुरु का सब जा पै निहार उनकी सेवा सुई लाग जिसन कृपा कर बड़ पाग नाम जब पाव विश्राम नानक दिन पुरख का उत्तम कर्मान जो किश कराय सुप्राव करांग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाई हुआ सो हुई करण यार पुछाण से प्रभु का किया जन मीठ सगाना जय स सदा दृष्टान जय ते उपजे दवाह समाई हुए सुख नदान उन्हों बने आया को आप दिनो मै नानक प्रभु जनि कु जन सलोक सर्व कर पार पूर प्रभु व्यर्थ जन नार जाके सिमरन उदरिया नानक देह बल हर अष्टपदी टूटी गंढ नार गोपाल सर्व जी आप प्रत पाल सगल की चिंता जिस मन माहे तेह ते व्यर्थ कोई ना हिरी मन मीरे सदा हर जाप अवनासी प्रभ आप आपन किया कछु न हुई जी साओ प्राणी लोचा कोई तेस बेन नाहीं तेरा किश काम कत नानक जापी कर नाम रूपवंत हुए नाहीं मोह है प्रभु जो सगल कट सो है तनवंता हुई क्या को कर बै जा सब किश

जग ब्रह्माय जन्म मरै फिर आवै जाई। ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जग रंग नाना पीह करे एक रंग नाना वेद किन विस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चल करी किन माही। पूर रहो गुण सब ठाई नाना वेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आप पाई। सब काट तिसके सब तिसके ठाव जाप जाप जीव नानक हर नाव। नाम के तारे सगरे चंद नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वीर प्राण। नाम की तारी सुनन ज्ञान त्या नाम की तारी आकाश उपातार नाम की तारी सकल आकार नाम की तारी पुरिया सब भव नाम के संगोदर सुन श्रवण कर कर पाए। अपना नाम लाई नानक चौथे पाद में सोजन गत पाई। रूप सात जाग सात स्थान ऊपर सात केवल प्रदान कर दू सात सात जाग बाण सात पुरुष महसमाणी सात कर्म जाकी रचना सात मूल सात सात उत्पात सात करणी निर्मला निर्मल जिस बजाय सा सा परि सात नाम प्राप्त कर सुखदाय विश्वास सात नान गुरु उपाय सात वचन सात उपदेश सात तीय जन जा कर दुर्व सात नृत पूजा जी कोई नाम जपत ता की गात हो सात किया सब सात आप जाने अपनी व्यत गात जिसके श्रेष्ठ सुकर्ण।

अमृत वचन हर की गुण गाय उपरां तन कह स्वाठ पह उपरा पीखा नीरा मिटा ज्ञान बिन सहंती रसन पति हृदय साव मन छिन्न फल पाव अलत पलत दुई सुवार राम नाम अंतरवरतार पूरे कर के पूरी दीखिया जस मन बसा तसा प्रीखिया मानता नाम जप हले बलाय दुख दर्द मन तु पाव जाय सच वा पार करह वा पार दरगन वह खीप तुम्हारी एका टेक रख मन वाह नानक बहुर न आवह जाय तेह ते दूर कहाँ को जाय उबरा रख नार जाय निरुपाय जप सकल पाव मिटाय प्रभु कृपा प्राणी छुटा जह प्रभु राख तह ना दुख नाम जब मन उपत सुख चिंता जाय मिटाय अहंकार तेह जन को कुए न पहुँचन हर से रूप ठाड़ा गुर सूरा नानु दाग गार पूरा बात पूरी अमृत जाग दृष्ट दर्शन पीखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हरु दान सेवा शिव पूर्वानंतर जम पुर प्रदान जय हनुमान बसा सोदन हार ताक निकट नावत काड़ अमर पाई अमर पद पाय सा संगनान करते आय सरो ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश हार कृपा दे संत भेट नानक मान प्रकाश अष्टपति संत संग अंत प्रभु डीठा नाम प्रभु कला कमीर सकल समिग्री उसकट महान करंग नाना दृष्टा ही नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देह मैस कब श्राम सोन समाधान हत तह नाद कहना जय आचर जब समाधन दी खज हव दिखाई नानक ते जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रहे भगवंत तरन वाही आकाश पाए आर सर्वलोक पूर्ण प्रत पार बंत इन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अगत ऐसा कर्म पावन पाणी बस अंतर माह चार कुंट दह दिशे सुमाही तेह ते भेन नहीं कोठा गुरु प्रसाद नानु सुख पावीत प्राण समृत मैं देख ससि अर सून रख अतर मह एक बाणी प्रभु के साकू बोलया वह डोल न कबू डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल पाई है गुण है मोर सर्व जोत मैं जागी जोत तार रही स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नाह नान तिन मैं हो विशास संत जना का पीख सा ब्रह्म संत जना का हृदय हव धर्म संत जना सुनेह सो वचन सर व्यापी राम संग रचन जिन जाता तुसके हृदय तु सात वचन साधु सब कह तु जो जो हुए सोई सुखमान करन करावन आर प्रभु जाने अंतर बसे बाहर भी ओह नानक दर्शन दिख सा मुह आप साध किया सब सात ते प्रभु ते सगरी उत्पात तेह पावेत कर विस्तार तेह पावेत एक अंकार अंक कला लखी नह जाय जह पावत हले मलाय कम निकट कवन कहिया दूर आप आप आप भरपूर अंतर्गत जिसाव जनाय नानक जनाव जय सर।

जैसे हुए सो नाह बुरा उरे कहो हुक न कछ करा। आप भला कर तू तदन किया पे जाने अपने जी किया साच तार सब साच ओत पोता अपन संग्रह ता किया तुम्हें कुछ न जाए दूसरो इतना सोजी पाए दुसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख आप में लाई लय प्राय सोय हो धनवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिस रदा भगवंत तान तान तान जन आया जिह प्रसाद सब जगत त्रा जनावन कह स्वभाव जन का

पाया पूरे विगुण का वस्पति पूरे गुर का सनापति यस पार ब्रह्म निकट कर बिक सा सा समर गोविंद मन अंतर की उतरा चंदा सनियत त्याग तरंग संतजन की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरु हर तन के परलि हुकुंडा नान गुरु गुरे नमस्कार कीम कुशल सहजा आनंद साधु संग पज परमानंद नरक नवार उदार जियो गुण गोविंद अमृत रह पियो चित चित वह नारायण एक एक रूजा करंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जी अकाई आधार उत्तम श्लोक साध के वचन।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहै सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार, चौपई को कहै चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस गुण तीन कहिजै, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुम री कर, मैं ना कहे हो, सब तो है बखान्यो। दोहरा

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धर के बोलना जी। पंजा प्यारियां चहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड के छकया दे चलाई तेग वाही दे के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां ना चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया।

भी है एहन सो सहज सुपाई दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाई हो वै सिपत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन।

ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी संघीता ब्रह्म ज्ञानी कुंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञान जिस कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञान को खोजे महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सुप्रात, ब्रह्म ज्ञानी का सगलोकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नान ब्रह्म ज्ञानी सर्व का

अंतर हुए अज्ञान प्रकाश दान का नहीं विनाश मंत्र नाम तेक रंग सदा वसी पारों के संग जो जल में जलिया खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिल के गौन पाए सराव नान प्राप्त के साथ कृपाण सलोक सुखी वसी मस्किनी अनुवार तरे बड़े बड़े हंकार या नान कृप कलेश पति जिसके अंतर आगमान सो नरक पाती उस समान जो जाने में जो अनुवंत सो तो विष्टा का जान आज को करवंत का

जिस को हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कौ किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुख।

रूप अंत होए नाही मोहै, प्रभु की जोत सगल घट सोहै, धनवंता होए क्या को गर्वै, जां सब कछु जां सब किछु तिस का दिया।

चरण कमल हृदय सिमरह सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद सब प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोई अमृत पीवै अमृत सो होए उस पुरख का नाहीं कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले।

अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार अब रूपाव सब मीत विसार हो चरण कमल रिद मह उर धार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ एहो धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन कौ चार कुंट उठ धावह सो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख कौ नित बछह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सोभा को करह भली करनी सा सोभा भज हर की सरणी अनक्य उपावी रोग न जाए रोग मिटे हरे वखद लाए सर्प निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हो हर कै नाए दै दिस धावत आवै ठाए ताको बिघन न लागै कोई जा कै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंड हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ